0: अरे नहीं मम्मा, वो लीक हो जाएगा, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे।
1: अरे लेके जा, रणदीप को बहुत पसंद है, ऐसे बोलोगे तो लेके जाना। बाय बाय। अभी तुझे याद कर रही थी, मेरी फैमिली परी गोभी की सब्जी बना रही थी। अच्छा सर।